राजनीति 2083 साल वैशाख महिनाको आज 25 गते तदनुसार इसी सन् 2026 मई 8 तारिक शक संवत्सर 1948 नेपाल सम्वत 1146 बसलागा रुद्र नामक संवत्सर उत्तरायण वसन्त

पालन हुने श्री शिव गोरक्ष योगी नरहरिनाथ साङकोटी होम महार्गे 2083 हवन सामग्री सहित उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। स्थान बागेश्वरी आश्रम देवघाट धाम चितवन। आयोजक श्री बागेश्वरी आध्यात्मिक परिषद योगी नरहरिनाथ आश्रम एवं श्री सनातन सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण संघ।

जंजरी पता नहीं कि मैं वापस आऊंगा कि नहीं, बट इफ आई डोंट कम बैक दोबारा शादी मत करना।

हमें भी ऐसे पीछे करना अच्छा नहीं लगता, हम भी कल्चर लौंड हैं। इतने सालों से हिम्मत जुटा रहे हम, आज बोल देते हैं पसंद हो तुम हमें, तुम डिसाइड कर लो क्या करना है।

0: रेडियो साइनम 89.8 मेगाहर्ट्ज।
1: हमें भी ऐसे पीछे करना अच्छा नहीं लगता, हम भी कल्चर लौंड हैं। इतने सालों से हिम्मत जुटा रहे हम आज बोलते थे पसंद हो तुम हमें, तुम डिसाइड कर लो क्या करना है।